प्रोप्राइटर गम्बहादुर लकान्द्री, शर्मिला लकान्द्री, सन्ध्या सुनचाँदी हस्तकला उद्योग, खासदारी एक भानुचोक सङ्खुवासभा, सम्पर्क 98 42 36 56 31, 98 070 13 265।

तपाईँलाई तयारी सुन र असली चाँदीका गहना आवश्यक छ या पुराना सुन रिफाइन एक नम्बर बनाउनु परेको छ? यदि त्यसो हो भने सधैँ हामीलाई सम्झनुहोस्। मनोकामना सुन चाँदी पसल। कैनपुर छ कैनपुर बजार त्रिचोक प्रभागर पदम रसाइली ममता रसाइली। सम्पर्क 98 6 21 37 744 र 98 1 53 87 775।

0: ओ मेरो फुलीवारी, अब के छ त भित्र?
1: के भित्र? को फुलीवारी? म त बहिनी।
0: बहिनी त साली हो तिमी, त अनि मेरो फुलीवारी।

श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पास से हमारे दोस्त शम्स आलम, जिनकी बेगम साहिबा सामिया जहरा उनसे नाराज बैठे। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से

0: Lake.
1: जो हो पंछी
0: लाहौर को फैशन कसरे
1: हाँ तो स्पेल जाएगा लो घूम तो
0: लो